अंत लहंगे मुक्त फाल पाप हिंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देह मो कोट कबिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा अवसास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरीपुरी समेत चाओ पई जो यह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आदि ब्याद शुवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लाहो लेह सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तास तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की और अकबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जाबते तुमरे ताबते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री सपान।

कारज सब सुवारणा सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाईया

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है Live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: वाहे गुरु जी की फतेह है।

लेव लागा जिन कौ कृपा कीनी मेरा स्वामी तिन अन दिन हर गुण गाए सुन मन भीने सहज सुभाए जोग मह।

अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गावह सहज समावह शब्दे मेल मिलाए नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत स्यो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त।

हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिय अकथ कहानी हिरदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिय मस्त।

अंतर चतुराई थाय न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कुटंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई हो पूछो।

0: आग सुधा सुधा पाठ पोला करना सुधा नहीं करना जेन प्रभ लद्दा लद्दा जड़ा लल्ले ते अधिक प्रभाव लाउणा ओह धन भाग सुधा जेन हर प्रभ लद्दा हम तेस पह आप वेचाया
1: नानक दीना सरन।

आठ पहर तुद त्याई गर्भ न कीजै रेण हो बीजै ता गात जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही घन चेरी राम तुम गाहुर आत।

0: लाख लाख बरिया जिन भ्रम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे।
1: खोला पाठ भी भारा करना जिदा उचारण किया पंक्ति सारी दा हौ बल जाई लाख लाख लाख बरिया जिन भ्रम पर्दा खोला राम
0: मिटे अंधारे।

यह प्रीतम हर गुण सुनिह अविनाशी राम सुन सुन इह मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम कटिया जम फासी सिम

हार गुण सुनी है अविनाशी, करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है, चरण चल है प्रभ मार्ग राम, भव सागर नाव हर सेवा, जो चढ़े इस तार

0: काम कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है, अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत दे पाश, जो पिछे रह गए पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पास जगत देच इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा की कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे हैं, तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी ही तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआं देच भी ने, पक्षियां देच भी ने, और पत्थरां देच भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालया। पर ऐसे भी टीले जे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे, जिन्हां नु कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गलते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है गलते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह दी जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह दा जीवन जीवदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूरन पुरख उसनू कहिंदे ने जो समाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूरन पुरख, मुकम्मल इंसान, पूरन पुरख। वो पूरा है जिसका समाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनैतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल से पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी देच भी, इस तरह की जिंदगी देच भी समाज, राजनीति ते धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखां नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है। पर किसी दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सूझ चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया है, इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है। लेकिन अख ये नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ये भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है। अखां ये भी दसण दे असमर्थ ने कि ये राजनैतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहती है, अंदर दी अख अक्सर मनुखां दी बंदी रहती है। बाहर दी अखां ये दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकती है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकती है, वो अख बहुत गहरा वेख सकती है। ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां, पर देखण दे चाहुंदा है। एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोए दिवे बदलिया, मलक बहठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने, आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं है ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लबण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकार में ही हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है, त्रैनैनं, तीन नेत्रां वाला, त्रिलोचन, लोचन अखां नु कहिंदे ने, त्रिलोचन, इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नो कहिंदे ने, त्रैनैनं बरी पुत्र का ताहे को प्यो, त्रैनैनं तीन नेत्रां वाला। कहिंदे ने ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ, ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਠੇਠ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਪਨਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਚਪਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲੌਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, वासना बड़ी अपार, तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है, तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। समाजिक जीवन रेच, राजनीतिक जीवन रेच, धार्मिक जीवन रेच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लिए ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया ने, परमात्मा नू जानिया ने, जानकारी बहुत कठी कीती है, और कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा, पर सेकंड तू कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनू शरीर दी कोई समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनू कोई थोड़ा जा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनू कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इस नू इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो ओ सारी जानकारी बेमैनी हो जांदी है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, और यही महापुरुष कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया। एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नू भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया, ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसी मां दी गोद विच उसका बच्चा, एक मासूम बच्चा, और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद विच लिया, अज जमे है, एक दिन दा है, दस दिन दा है, पंद्रह दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद विच है, सो रहा है मां दी गोद विच, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं, पिला रही है, रिजक दे रही है दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है, परचा रही है, खिड़ा रही है अपने हथा नाल, पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखी है बहुत सारिया नू कोई बोध नहीं, असि कित्थे आ, किस दे हत्था दे चा, किस दी गोद दे चा, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया है, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं। मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता। हाथ है गे ने कुछ भी नहीं कर सकता। पैर है गे ने चल नहीं सकता। दिमाग है सोच नहीं सकता। कान है गे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हू कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारिया का धार्मिक दुनिया के जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है। ये असि किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गया है। लेकिन ये सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। इस तरह हो रहा है जैसे गोद दे बच्चा है, दूध पी रहा है, खिड़ाया जा रहा है हत्था दे, सुलाया जा रहा है गोद दे, पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमयी चल रहा है। दूध पीना भी अचेतमयी चल रहा है, हत्थां दे खेड़ना भी अचेतमयी चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत ते खड़े ने, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी ते मिलना चाहिए। बच्चे दा जन्म हो गया है, इस कोई सामाजिक जीवन नहीं। बच्चे दा जन्म हो गया है, एदे कुल कोई राजनीतिक जीवन नहीं। बच्चे दा जन्म हो गया है, एदे कुल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है, लेकिन जिसनु कहने ने जिंदगी ए नहीं है, जिसनु कहने ने जीवन ए नहीं है, ए ते विकसित हो गया। फिर जिस अज समा होवे लगेगा, लेकिन ऐसा देखण दे चाया है, विकास हो जांदा है समाजिक जीवन का, रिश्तिया की समझ आ जाती है। ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है। अखां खुलदिया जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तिया की सोच समझ वधदी जा रही है। ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है। धार्मिक तौर ते अजे भी अनजान रह जांदा है, अजे भी मासूम रह जांदा है, अजे भी जो है बच्चा रह जांदा है। एक दिन राजनीतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जांदा है, सियाणा हो जांदा है, और राजनीतिक लोगां दीआं गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इक्को ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, इक्को ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुर्दमे नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਧ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਰੀਰਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ। ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਚੇਤ ਅਜੇ ਨਵਜਾਇਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਨਾਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬਰਾ ਬਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਕਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਅੰਧੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਕੋ ਥੇ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ, ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: सगली जमदाना
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे
1: सार जना की सेवा लागे
0: जे को अपना दुख मिटावे
1: हर हर नाम रिदा सदकावे
0: जे को अपनी शोभा लोरे
1: साध संगे हम शोरे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साध जना की शरणी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साध संग जाकर मिटे अपमान
0: आप सुको जो जाने नीचा
1: सहु गनिया सब ते ऊंचा
0: जाका मन हो सकल की रीना
1: हर हर नाम तेन घट घट चीना
0: मारे अपने ते बुरा मिटाना
1: इक सगल सृष्ट साजना
0: सुख दुख जन साम दृष्टिता
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा
0: निर्धन को धन तेरो नाव
1: निथावे कौन तेरा था
0: नमाने को प्रभु तेरो मान
1: सगल घटाको देवो दान
0: कर्म करावन हार स्वामी
1: सगल घटाके अंतर जामी
0: अपनी गतमत जानो आपे
1: अपन संग आप प्रभु राते
0: तुमरी उस्तत तुम ते होए
1: नानक अवरन जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हरिया
0: सगल उद्यम में उत्तम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी में अमृत पानी
1: हर को जसन रसन बखानी
0: सगल थान ते हो उत्तम थान
1: नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक
0: निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभु सदा समाल
1: जिन की आतिस जीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी
0: प्रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मोल ते कवन दृष्टानी
0: जिन तू सास सवार सिंगारिया
1: गर्भ अगन में जिने उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पर जो बन भोजन सुख सूद
0: बिरद पया ऊपर साख सैन
1: मुख पया ओ बैठ को दैन
0: एहो निर्गुण गुण कुछ न बूझे
1: बख्श ले होतो नानक सीजै
0: जय प्रसाद धर ऊपर सुख बस है
1: सुत भरात नींद बनता संग हसै
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव के अमुला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल समग्री संग सात बसा
0: दीने रस पाम करन नेत्र रसना
1: इसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
1: नानक काढ लियो प्रभ व्यापे
0: आदि अंत जो रखन हार
1: तिस्यो प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव नित पावे
1: तस्यो मूडा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सदा हजूरे
1: ताको अंधा जानत दूरे
0: जाकी टहल पावे दर्द हमान
1: तसे बसारे मुगदा जान
0: सदा सदा इह भूलन हार
1: नानक रखन हार अपार
0: रतन त्याग कौटी संग रचे
1: साच छोड़ झूठ संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने
1: जो होवन सो दूर प्राण
0: छोट जाए तिसका श्रम करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे धोए
1: कर तप प्रीत समसंग होए
0: अंध कूप में पतित बिकराल
1: नानक काढ लियो प्रभु दयाल
0: दूत पशु की मांस जात
1: लोक पचारा करे दिन रात
0: बाहर भेख अंतर मल माया
1: शबशना है कश करे शबाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान
1: अंतर व्यापे लोक समान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
1: गल पाथर कैसे तरे अथा
0: जा कै अंतर बसे प्रभु आप
1: नानक तेजन सहर समाज
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: कर गए ओढ़ निभावे
0: कहां बुझारत बुझे डोरा
1: इस कहिया तो समझे पूरा
0: कहां विष्णु पद गावे गोंग
1: जतन करे तो भी सुर भंग
0: पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं होत उहा उस गवन
0: करतार करना मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुम्हारी कृपा तरे
0: संग सहाई सो आवे न जीत
1: जो बराई ता स्यों प्रीत
0: बलुआ के गृह भीतर बसे
1: अंत केल माया रंग रसे
0: दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत
1: काल न आवे मूड़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ प्रकार महा लोभ त्रोह
0: यहूं जुगत बिहानी कई जन्म
1: नानक राख लिखो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पाए अरदास
1: जीव अपन सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारिक तेरे
1: तुमरी कृपा में सुख घनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: उचे ते उचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी
1: तुमते होए सो आज्ञाकारी
0: तुमरी गत मित तुम ही जानी
1: नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक
0: दिन हर प्रभ छोड़ के लागे आन सुहाई
1: नानक कहूं नसी जई बिन नाम है पत जाए अष्टपदी
0: दस वसूले पाछे पावे
1: एक वस्त कारण बिखो टकवावे
0: एक पीना दे दस पी हिरले
1: दो मुड़ा को कहां करे
0: जिस ठाकुर से ना ही चारा
1: ताको कीजे सद नमस्कार
0: जाते मन लगा प्रम मीठा
1: सर्व सुखता हु मन बुठा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व थोक नानक तिन पाया
0: अगंत शाह अपनी दे रास
1: हाथ पीत बरते अनंत उलास
0: अपनी ईमान कश बहो शाह होले
1: अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रतीत आप ही घोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: बस्ते सागे रखे
1: रोकी आज्ञा मन ने मथे
0: उसते चौगन करे निहाल
1: नानक साहिब सदा दयाल
0: अनक भांत माया के हित
1: सरपर होवत जान अनेत
0: बिरख की छाया से रंग लावे
1: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
0: जो दी सह सो चालन हार
1: लपट रहे होते अंधे अंधार
0: घटाउ सो जो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे के
0: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राज जोगन धन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या ਨਾਥ ਹਸਤੀ ਅਸੁ ਬਸਤਰਾ
1: ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ
0: ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ
1: ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ
0: ਸਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ
1: ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ
0: ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਹੇ
1: ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਬ ਕੋ ਹਿਰੈ
0: ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪਾਦ
1: ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ
0: ਮਿਥਿਆ ਜਨਮ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵਹੇ
1: ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲਬਾਵੈ
0: ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ
1: ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਮਿਕਾਰਾ
0: ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ
1: ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ
0: ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ
1: ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁਚਾ
0: ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਰ ਅੰਧ
1: ਮੁਖਿਆ ਉਠਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ
0: ਬਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ
1: ਦੇਖ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ
0: ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ
1: ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ
0: ਧਨ ਧਨ ਤੇਜ ਦੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ
1: ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ
0: ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ
1: ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਖੋ ਗੰਡ ਲਾਵਤ
0: ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ
1: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ
0: ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨ ਕਰੈ
1: ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ
0: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭਾਪ
1: ਇਸਕੀ ਸੇਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ
1: ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪੁਰਾਤਾ
0: ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ
1: ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੈ ਮਾਨੈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ
0: ਪਾਪ ਸਿਆਨਪ ਸਕਲ ਤੇ ਰਹਿਤ
1: ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੈ ਆ ਤੁਮ ਕੀ ਰਾਹਤ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ
1: ਸ਼ਾਂਤ ਅਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेब की दी संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहे बेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पर ये है जेते वर्ष वर्ष पर ये जेते मास पर ये जेती आर जा पर ये जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: तुम्हा पूरा तपे का सत गिर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पठानी अमलकिया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

पौड़ सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता विरले।

नानक कूड़ रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे

पौरी अपहिकरणा क्यों कलप हित धारिय देख किता अपना तर्क चिपकी सारिय जो आया सो चलसी।

होड़ी चक्कर लेके चक्रे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गर्द अंदर पाए बचो गवाया गला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस गहिया शाबाश नानक हुकम ना चले नाल खसम चलाया।

आपे पांडे साधी नापे पूरुंडे इक नी दुद्ध समाई अग चुले रैं चढ़े इक ने हाली तैस वाली गुपुर खड़े तिना सुवारे नानी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं तवा प्रसाद सवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधांतक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हो ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गरे नि जात बेचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमार सबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सब सब चार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सोध बहादुर अंत दुबह सो साज सुनह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चग चार लवैया साहेब श्री साहब को सिर नायक जाच का ने सो एक दवैया दानव देव फनेन्द्र साचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में साब थप थप पल ही पल में साब थप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कह बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरात अभजोन तरलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वयंबर साध बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पाता

नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी।

अकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फिर।

साहब जी महाराज जी श्री गोइंदवाल साहब जी की धरती नूं भाग ला रहे हन, जिन्हां दी बाबत भट्टा ने सवैयां दे विच जिक्र किया है। कानहार बूंद बासुर माबल कुसम बसंत गनंत न आवे, राब सास कैरन उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कबजन पल उनह जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनिया। गुरु अमरदास साहब जी जिहड़ी तेरी उपमा केवल तैनू ही शोभा पाउंदी, किसे बंदे नूं तेरी उपमा नहीं हो सकदी। बंदे नूं थोड़ी जी उपमा मिल जावे, मनुखता सांभिया नहीं जांदा व्या, बंदे दा सुभा है। इसे करके महाराज इन्नी उपमा लैण दे बावजूद भी आप जी अजर हो, इन्हां सारियां उपमा नूं जरन वाले हो, आप जी जिहड़ी शक्तियां नूं अजर जर हो। धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी गोइंदवाल साहब जी दी पावन धरती ते विराजमान हन। सिखां ने आके बेनती कीती महाराज जी दे कोल, सच्चे पातशाह जी सानू ए दसो कि सेवा किवें करनी चाहीदी है, ते सेवा दे विच महाराज जी की गुण हुंदे हन, सेवा करन दे नाल की फायदा हुंदा है। सतगुरु जी दसो ए सेवा किस प्रकार करनी चाहीदी है, ते महाराज जी दृष्टांत दिंदे हन। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਦਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਅੰਕਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪੰਘਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਹਾਰ ਜਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਵਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

0: ही कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है मैं नहीं जानता। सारे सवालों का जवाब नहीं दिया मैं, क्यों? कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। फिर अगा चल के लिखता है, आज मैं बुढ़ा हो गया, आज मैं बिरध हो गया, और मैं ऐलानिया कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जान जान के ए जाने है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सोई अजान कहे मैं जाने, महामूर्ख उसनु समझ लो जो दावा करे मैं जान ले। सोई अजान कहे मैं जाने, जानन हार न जाना रे, पर जिसने जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, ए जान ले। बड़ा वड्डा जानना है, बहुत वड्डा ज्ञान है कि जिसने ए जान लिया कि मैं नहीं जान सकता, तू इतना महान है, इतना महान है, मैं नहीं तेनू नाप सकता, मैं नहीं पैन तोल सकता, मैं नहीं तेरी सिफतां की गिनती कर सकता। वो चीज पकड़ दे आ जाती है, समझ दे आ जाती है, जो नाप दे आ जाए, तोल दे आ जाए, गिनती च आ जाए। पर जो गिनती च भी ना आवे, तोल दे भी ना आवे, नाप दे भी ना आवे, समझ दे भी ना आवे, तो फिर किस तरह बयान करोगे? असीम है, असी उसनु गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, उते व्यापक है, सब कुछ उसे दे विच है, उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। इस उत्ते मैं एक उदाहरण देना होना थोड़े सामने रखा। एक मछली सागर विच अपने परिवार को बहुत दूर जा सकती है, और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है, क्योंकि जमीन नालों तीन गुणा पानी ज्यादा है, सागर बहुत बड़ा है। एक मछली अपने जन्म स्थल तो बहुत दूर जा सकती है, और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो, अपने वतन तो बहुत दूर जा सकती है, और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है। लख भी मछली कोशिश करे, सागर तो दूर नहीं जा सकती, पानी तो दूर नहीं जा सकती, जिथे जाएगी पानी ते है, जिथे जाएगी सागर ते है। मनुख अपने वतन तो दूर जा सकता है, और अक्सर चला जाता है। मनुख अपने घर तो दूर जा सकता है, और अक्सर रोज चला जाता है। मनुख अपने परिवार को दूर जा सकता है, और अक्सर चला जाता है। लख भी कोशिश करे, मनुख निरंकार को दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जिथे जाएगा निरंकार पे है, तू सबनी थाई, जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो, तू ते सारी था। मैं फिर अर्ज करा, सारी थां ते मेरा वतन नहीं है, सारी थां ते मेरा जन्म सथल नहीं है, सारी थां ते मेरा परिवार नहीं है, सारी थां ते मेरा निरंकार है। तू सब नहीं थाए, जिथे हो जाए साचा सिरजन हार जियो, जो किसे वक्त है ते किसे वक्त नहीं, ते किसे थां ते है ते किसे थां ते नहीं, वो ते याद आउंदा है, पर जो व्यापक है वो बोलदा है। इस वास्ते सत्संग, ए मंदिर मस्जिद इस वास्ते ने, ये गुरुद्वारे इस वास्ते ने, उसकी याद आ जाए, उसकी याद आ जाए। मैं फिर अर्ज करा, असी उसनु गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते। उनु भूल जाना महा दुख है, उनु याद करना महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल, उन्होंने दो सवाल बड़े कीमती किए ने, और उन्हें समझे बिना की कीर्तन किया ते की सुने, की कथा कीती ते की सुने। लोगन राम खिलौना जाना, कर्म कांड चलता है, चाहिए कर्म कांड भी चाहिए। अगर छोटी उम्र च मनु खिडौणिया नाल खेड़दा है, कर्म कांड नु कबीर इंज बयान करदे ने, फल कारण फूली बन राय, फल पाका तब फूल विलाए। जैसे जैसे फुल विचों फल निकलदा फुल झड़दा है। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नाश। जब ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है कर्म कांड सारा खत्म हो जाता है। अगर कर्म कांड सारी जिंदगी पीछा कर रहा है छुटदा ही नहीं तो ज्ञान का फल अजय नहीं निकले। सारी जिंदगी दवाई खानी पै रही है हटदे ही नहीं दवाई औषधि तो अजय रोग नहीं गया, रोग नहीं गया। रोग दे जानदिया दवाई नु जाना ही पेगा, रोग दे मिटदिया दवाई नु परे सुटना ही पेगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदिया कर्म कांड एक पासे हो जाता है। पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्म कांड है, चाहे मुस्लिम जगत है शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है कर्म कांड ही कर्म कांड है, चाहे सिख जगत नु मैं देखदा फोका कर्म कांड ही कर्म कांड है। ऐसे कुछ भी नहीं बल्कि इस तो अलावा कुछ भी नहीं। कर्म कांड साल छह महीने ता तो ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड़दा। या कर्म कांड इंज है जिमें पहली क्लास विच बच्चे नु पाया उन्हों अजे अक्षरां दा बोध नहीं है। इस नु अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राही समझाया जांदा है। कक्का कलम, चचा चाकू, छछा छतरी, एड़ा अंब, अंब दी तस्वीर बनाईए ताकि इन्हू पता चले अक्षर एड़ा है। गग्गा गणेश, पर साडा देश जड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है, पहले तो गग्गा गणेश मिलता सी, अजकल गग्गा गदा मिलता है, हटा देता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं महापुरुषां नूं गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कढ़ो एक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर ते धार्मिक होण दा दावा कर सकदा है, और इसी देश ने ब्रह्म ज्ञानी पैदा कीते ने, अवतार पैदा कीते ने, संत पैदा कीते ने, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा कीते। पर की कीता जाए, कुछ अरसे तो मूर्खां दे हत्थ विच देश आया है, बिल्कुल मूड़ां दे हत्थ विच, कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है, किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम, श्री कृष्ण, जनक, महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन, देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी, किधरे हरिश्चंद्र सी, किधरे जनक सी, राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे, वो गुरमुख पहले सन, गुरसिख पहले सन, राजाबाद दे सन। कोई भी चीज कीमती घर विच आए महाराजा साहब नू रणजीत सिंह नू गुरु चेते आ जांदा है। कहिंदे ने निजाम हैदराबाद कुछ मुश्किल विच पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज दी, आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनू चाहिदा है, मेरी रियासत इच बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर तो भेजे, जिन्हां नूं अज असी दक्कनी सिंह कहिंदे आ, महाराष्ट्र दे जो रहिंदे ने, तमिलनाडु दे जो रहिंदे ने, आंध्रा दे जो रहिंदे ने, ते पोई ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन, अज उन्हां दी बहुत वड्डी तादाद है। पर उत्थे ही उन्हां ने शादियां दे सिलसिले चलाए तो मिक्स जिहा फैमिली हो गई है उन्हां दी, रंग रूप भी उन्हां दा आंध्रा तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया, लेकिन सिखी दा जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां विच। इंज कह लो सिखी दी सही तस्वीर उन्हां कोल मौजूद है, सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जद निजाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसियां ने अमन बहाल कर दिता है और खुशी वजह महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन पे निजाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर विच ये तकरीब मनाई जा रही थी महाराजा साहब की, चाननी बन दी गई सिंघासन ते। महाराजा साहब सभा दे आए, निगाह चली गई चंदोए ते, चाननी ते बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त, मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे ਟੁਕੜੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਚੇਚਾ ਹੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਚੋਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਨਣੀ, ਇਹ ਚੰਦੋਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀ ਪਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਤਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਤਾਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਬੜੀ ਛਿੜ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਜਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਤਾਰ ਕੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਧਨ ਚੋਖਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਧਰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਸਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪਸਤੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਆਸਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਣਾ ਨਾ ਪੈਣ। ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਆ ਖਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਸ਼ੱਦਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੋਆ ਖਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਵੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, वो ताकतवर ने, हालात ए ने, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। खैर मुख्तसर जो है मैच करा, देश धार्मिक सी, सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश दे पैदा है। इस देश की ऐसी हवा, ऐसी फिजा, ऐसी वाइब्रेशन, मैं देखता बाहर दे देशों की भी अपनी एक वाइब्रेशन। उसे साइंटिस्ट पैदा होंगे ने, विज्ञानिक पैदा होंगे ने, दार्शनिक पैदा होंगे ने, मनोविज्ञानिक पैदा होंगे ने, संत ने, संत इस देश ने पैदा किए। इस देश की फिजा, इस देश के हालात, इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, गम के बाशद चीज तो शादी। गम की है, गम किसनु आखोगे गम, और शादी की है, खुशी की है। शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है, ये गल वखरी। साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करते ने, ये लवज फारसी जबान का है, ईरानी भाषा का लवज है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। शाद का मतलब खुश, शादी का मतलब खुशी। ई खान है शादी अस्त, इस घर दी खुशी है। विवाह लई आनंद कारज लई उना कोल दूजा इस्लामी शब्द है निकाह। इस घर विच निकाह हो रहा है, निकाह तो मुराद लेने ने विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है। शादी लफ्ज वो खुशी लई वरतदे ने, पर साडे देश विच इस दे अर्थ विवाह बन गए, निकाह बन गए, आनंद कारज बन गए। भाई साहब भाई नंद लाल शादी लफ्ज नूं खुशी दे रूप विच लैंदे ने। गम चे बाशद, गम की है चीज तो शादी, खुशी की है। ते असीं पुछ सकदे आं भाई नंद लाल कोल, सानूं इतना विज्ञान नहीं खुशी की है ते गम की है, यकीन जानो नहीं पता। ना खुशी दे कारणां दा पता है, ना गम दे कारणां दा पता है, ना दुखां दे बीज दा पता है, ना सुखां दे मूल दा पता है। नहीं पता मनुख नूं, ये हकीकत है। इसे वास्ते सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन के ही। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते सारे उद्दम वसीले ते बंदा सुख वास्ते करदा है, पल्ले सिवाय दुख दे और कुछ नहीं पैंदा। इसका मतलब है जेड़ा बीज बो रहा सी सोचदा सी इस तो सुख निकलेगा, निकलिया दुख। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन थी। संसार विच पदार्थां राही, परिवार राही, धन राही लोड़ा दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे धनवान सुखी होने चाहिए ने, सारे ही रो रहे ने। पुत्र मिल गया एक लोड़ा दी पूर्ति हो गई, यह सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे पुत्रा वाले सुखी होने ही चाहिए। पति मिल गया है, पत्नी मिल गई है, जैस घराना मिल गया है, लोड़ा दी पूर्ति हो गई है, सुख नहीं मिलता। नहीं तो सारे परिवारक जीवन वाले सुखी होने चाहिए। सब रोंदे पिटदे मिलते पैन, सुखी तो एक भी नहीं मिलता। सुख ना ही हर भगत बिना, मनुख नूं नहीं पता ना सुखां दे मोल दा, ना दुखां दे मोल दा। गम के बाशद, गम की है चीज तो शादी, खुशी की है। भाई साहब खुद जवाब देंदे ने, लगदा है इंज उन्हां नूं भी पता सी आम बंदियां दे कोल सुख दुख दे जिहड़े बीज ने गलत ने, सूझ बूझ जिहड़ी है गलत है। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, परमात्मा नु भूल जाना बस यही दुख है और कोई दुख नहीं। चीज तो शादी, खुशी की है। याद आंबा मुंतहा, उनु याद करना ही खुशी है और कोई खुशी नहीं। अगर परमात्मा दी याद नहीं तो चंगे परिवार दे होंदियां भी मनुख रोंदा रहेगा। जेब भरी हुई है धन नाल, पदार्थां नाल घर भरिया है, पेट भरिया हुआ चंगे भोजन नाल, मान मर्यादा भी सब कुछ है, लेकिन रोम रोम इसका रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि परमात्मा दी याद ने। और जितना जगत इसनु कहेगा बहुत वड्डा मनुख है, क्योंकि चोटी दा धनवान है। महाराज कहते बड़े बड़े जो दीशे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। बड़े रोगी मिलणगे, बड़े दुखी मिलणगे, परेशान मिलणगे। बेजार मिलन गए। गम थे बासद गम की है परमात्मा नु भूल जाना, और खुशी की है चीश्त शादी याद आंदा मन तेहा, उस ला इंतहा परमात्मा नु याद करना बस यही खुशी है। उन्हों भूल जाना बस यही दुख है, और ये कितना वड्डा दुख है ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो, मैं फिर दोहरावा असी परमात्मा नु गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है भूल सकते। जिन्हों भूल गया रिश्ता टूटदा है, जिसकी याद आवे रिश्ता जुड़दा है। कीर्तन एक बहाना है, कथा एक बहाना है, पाठ पूजा एक बहाना है, ये सारे धार्मिक मंदिर बहाने ने भी किसे बहाने नाल उसकी याद चल पाए। खुद चित आए महा आनंद, तेरी याद महा आनंद है, जिस विसरे सो मर जाए जी, और जो भूल जाए ओदियां सारियां ही खुशियां मर जांदियां, उसके सारे खेड़े मर जाते, उसका सारा ही सुख मर जाता है। कि सुख मर गए, खेड़े मर गए, खुशियां मर गई, फिर रहा कि फिर मनुख को, मनुख तो एक जीवदी जागदी लाश होगा, और की है। कई मनुख मुसाखी माफ में देखना बस शरीर नू ढो रहे ने, जिमें अपनी लाश आप पे ढोंदे ने, कुछ भी नहीं। सुख मर गया, चैन मर गया, सुकून मर गया, शांति नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है, रस ते मर चुके हैं, सुख ते मर चुके हैं, आनंद ते मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख मनुख की अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, और ये अपनी अर्थी आप पे घसीटदा है। दिसदा है जीवदा जागदा पे सर्व सौसा दे चलन नो, जीवदा जागदा नहीं आखीदा, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जिन्ने चिर तक उसकी याद न चले, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। चेते शक्ति याद शक्ति एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा, जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज लोग कीर्तन करते ने सुनते ने भूल जाते, कथा करते ने सुनते ने भूल जाते, पाठ करते ने गुरुद्वारे आते ने मंदिर आते ने भगवान से भूल जाते, जेडे नहीं आते वह भी भुले, जेडे आते उन्होंने भी भुले। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं थे, समझ दे नहीं आता, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, समझ आ जाता है नहीं, समझ समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद पे कर सकता। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनू चेते आया। तेथिन दी गल है, सागर तट ते एक पांच साल साढ़े चार साल का बच्चा जारो जार रो रहा है। उस वक्त का एक महान संत सुकरात टहल दा होया उत्थे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आया, सिर ते हाथ रखिया, आखिया बेटे क्यों रो रहे हैं? उहदे हाथ विच प्याला सी, प्याला। कहण लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिए, पर करा कि मैं काफी देर का थक गया, इस सागर मेरे प्याले च नहीं आवदा। कहिंदे ने बच्चे की यह गल सुन के सुकरात की भी चीख निकल गई, रोन लग पिया। फिर बच्चा कहन लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पे, तेरा प्याला कित्थे है, तू क्यों रोन लग पे, तेरा प्याला कित्थे है? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझ दे चाहता है, हासा समझ दे चाहता है। मनुख जन्म तो जो लेके आता है संसार विच हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखता है, समाज तो सीखता है, कोई मनुख भाषा लेके नहीं आता। एक बंगाली मां का बच्चा जो उसकी गोद विच है, पंजाबी मां की गोद विच दे दिता जाए, पंजाबी बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। एक ईरानी मां का बच्चा गुजराती मां की गोद दे देता जाए, यकीन जानो पर्शियन नहीं बोलेगा, गुजराती बोलेगा। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਕਦਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਇਕਦਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਇਕਦਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਗਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਫਕੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है, लभ रहे है, तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहिंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चाहे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहिंदे ने। ए राजा होना चाहिदा है, ए राजा बनना चाहिदा है, ए महाराजा बनना चाहिदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ़ रहे है, धन कढ़ रहे है, और लंबे समय तो इसकी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करता आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होने का दावा कर दे रहे, महाराजा होने का ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे वो राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियों नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। ए गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहे ने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करते रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनु सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनिया नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मा दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया, और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकया। फिर भी ये अपने आप नू कहिंदा ते रहा, मैं राजा, मैं महाराजा, पर नहीं,
तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नू राजा नहीं बना सकया। निगाहां आसमान ते चलिया गईयां, चंद्रमा ते और ग्रह नक्षत्रां ते, शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है, झोली खाली है, निगाहां और अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ए बंदे जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बार जितनी भी खोज करेगा तेरी लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा, फिर किथे खोज करिए। तो सतगुरु दी वाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। भगत कबीर भी फरमान करदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी लाए। ए बंदे जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दिच जाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बार मुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बार मुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढ़न लई बार मुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर जात मार के रब्बी खजाना कढ़ना, इहदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नूं अंतरमुखी करना है, जो बाहर जा रहा सी उन्हों अंदर लेना है। बंदे खोज दिर हर रोज, ना फिर परेशानी ना है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणय परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह दी खोज अपने अंदर भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड दी खोज कर करके पदार्थ तेरे हाथ लगे ने, पर जे तू पिंड दी खोज कीती तो परमात्मा तेरे हाथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदियां करदियां तेनू शांति सकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिलिया, धन मिलिया, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिया अंदर जाती मार, मन दे चंद्रमा दे चों तेनू ओ अदुती खजाने लबन गे, कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदीवी माला माल, सदीवी चढ़दी कला, सदीवी आनंद। बंदे खोज दिल हर रोज, ये खोज रोज रोज करनी पड़ेगी और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ये खजाना हथे नहीं आउंदा, ये दौलत
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਥਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਕੰਗਾਲਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹੀ ਫੁਰਨੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: Mercy.

रामचंडी राग के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों से ही जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। अर्थिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नूं कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष के कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष के कणु भी हैं और नारी के कणु भी हैं। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध अंग, और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध अंग। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल नूं ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने ये गल अंदरों ते तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर

चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ दया मजा उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जो करिया हो रच्छा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जावन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जावन काल सब जगत बनायो, देव दया जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पाट पाट की जान। जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तारत तब देह अपारा, जब या कारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आपे अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद अस